الله تعالى. घर ले गए और सैयदना सहद बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, देखो अब्दुर्रहमान, तुम मेरे भाई हो आज के बाद। और ये दरमियान में एक लाइन ऐसे खींच ली, ये आधा घर तुम्हारा है, ये आधा घर मेरा है। मेरी मारो दौलत इतनी है, आधी तुम्हारी है और आधी मेरी है। मेरी दो बीवियां हैं, एक को मैं तलाक देता हूं इज्जत के बाद, एक बीवी तुम्हारी तुम शादी कर लो और दूसरी मेरी है। मेरे भाई, ये ख्याली बातें नहीं हैं, ये अफसाने नहीं हैं। अल्लाह की कसम, इन लोगों ने अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर की है और इसी जमीन पर चलते फिरते इंसान थे। मैं फरिश्तों की बात नहीं कर रहा यहां पे, हमारी तरह इंसान थे। इंसान सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखें तर हो गईं। अरे, इस जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ और एक फरमान पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, घर में ले जाओ। यह नहीं फरमाया कि सब कुछ आधा आधा कर दो। एक फरमान, एक मरतबा, सुनो, दो मरतबा नहीं। मेरे भाइयों, आज हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मरतबा बयान करते हैं, 10 मरतबा, 20 मरतबा, सैकड़ों मरतबा, लेकिन कोई है जो सुनने वाला हो? एक मरतबा फरमान सुना, उसे बेहतरीन तरीके, उस फरमान पर बेहतरीन तरीके से अमल किया, आधा आधा कर दिया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, बारक अल्लाह लक फी मालिक व अहलिक, अल्लाह ताला बरकत डाल दे तुझे तेरे बीवी बच्चों में और तेरे माल में। मुझे बाजार का रास्ता दिखाओ, बाजार कहां पे है? ताजिर थे, मेहनत करने वाले थे, बगैर मेहनत के रह न सके। आज हम मुफ्त हो रहे हैं, कोई ऐसी ऑफर करे, कोई छोड़ने वाला है? फिलहाल तो ऑफर करने वाले है कोई नहीं, अगर कहीं से कोई आ जाए तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। उस अजीम इंसान को देखें, रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा अजमईन, बारक अल्लाह लक फी मालिक फी अहलिक व औलादिक व मालिक, अरिनी सूक, बाजार कहां पे? बाजार की तरफ जाते हैं और तिजारत का काम करते हैं। सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उन अग्निया सहाबा कराम में से हैं। आप जानते हैं, जब वफात हुई उनके जो माल दौलत थी, जो उनके वरसा में बांटी गई, इतना सोना था कि आरियों से काट करके, आरियों से काट काट के उनके वरसा को हिस्सा मिला है, आरियों से। अभी मदीना आए तो कुछ था भी नहीं, दो कपड़ों में आए थे, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए आप कदम उठाते हैं तो अल्लाह ताला कामयाबी जरूर अता फरमाता है। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, जो अल्लाह ताला से डरता है, तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आसान रास्ता जरूर निकालेगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, लेकिन बात तकवा की है, अल्लाह ताला के डर की है। दावा करना और बात है और अमल करना और बात है। अमल करके देखें ना, आज हम भी परेशान हैं, हम में से कोई ऐसे शख्स नहीं जो परेशान ना हो। किसी की औलाद नहीं है, किसी की जॉब नहीं है, किसी का कोई प्यारा बिछड़ गया है, कोई कर्ज के नीचे दबा हुआ है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इंसान जरूर परेशान है। लेकिन क्या हमने अमलन तक्वा इख्तियार किया है? करके देखें। और एक आम सी मिसाल देता हूं मैं। एक शख्स था, बड़ा अच्छा ताजिर था,